सबसे हीरे तुल्य चेती किसकी है, बिंदी की तो बिंदी की कितनी महिमा है। इसीलिए बाप दादा सदा कहती है कि तीन बिंदु सदा याद रखो, आठ नंबर सात नंबर तो फिर भी गड़बड़ से लिखना पड़ेगा, लेकिन बिंदु कितना इसी है। Champion.

जब आते हो तो इस सृष्टि मंच पर कर्म करने के लिए आए हो। ये सृष्टि मंच ड्रामा है, तो ड्रामा में जो भी कर्म किया स्टॉप लगाओ। तो फुल स्टॉप भी क्या है, बिंदु। इसलिए तीन बिंदु सदा याद रखो। सारी कमाल देखो, आजकल के दुनिया में सबसे ज्यादा महत्व किसका है? पैसा। पैसे का महत्व है ना, माँ बाप भी कुछ नहीं है, पैसा ही सब कुछ है। उसमें भी देखो, अगर एक के आगे एक ऐसे में भी बिंदी की कमाल है। और श्रेष्ठ आत्मा बनने में भी बिंदी की कमाल है। और करावनार भी बिंदु है, तो सर्व तरफ किसका मैदा हुआ? बिंदु का ना। बस बिंदु याद रखो, और विस्तार में नहीं जाओ, बिंदु तो याद कर सकते हैं। बिंदु बनो, बिंदु को याद करो और बिंदु लगाओ, बस ये पुरुषार्थ। जब कोई समस्या आती है बिंदु लगाते हो या क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, बिंदु लगाना। क्वेश्चन मार्क इतना टेढ़ा होता है, देखो लिखो क्वेश्चन मार्क।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बहुत दुखी है, बाप दादा को अभी इतना दुख देखा नहीं जाता। पहले तो आप शक्तियों को देवता रूप पांडवों को रहमाना चाहिए। कितना पुकार है अभी आवाज, पुकार का आपके कानों में गूंजना चाहिए। समय के पुकार का प्रोग्राम करते हो ना, अभी भक्तों की पुकार भी सुनो, दुखियों की पुकार भी सुनो। अभी थोड़ी थोड़ी पुकार सुनो तो सही, बेचारे बहुत पुकार रहे, जिगर से पुकार रहे, तरफ रहे। साइंस वाले भी बहुत चिल्ला रहे हैं, कब करे कब करे कब करे, पुकार रहे। आपका गीत है दुखियों पर कुछ रहम करो, स्वयं आपके कोई रहम नहीं कर सकता। Sagar

स्वरूप। लाइट हाउस पर

0: चिल्ली की किरणाए।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अभी देवर गति का समय, देवर पुरुषार्थ का समय, साधारण पुरुषार्थ का समय नहीं है। Yeah।

0: 7 caries me lagare. Tu silence che shanti vale. Abhi laksh rakho. Agar parivartan karna hai. Knowledge bolo. To abhi powerful bano.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: इस वर्ष की ये लास्ट मीटिंग है, लेकिन दूसरे

کاری کرنے ایک تو اپنے سے واسطہ کو ست

विशेष कमजोरी हो। आप तो जानते हो ना अपने कमजोरी।

sig. Fjerdet sank alle på. Sig gråd. Chota gråd vi. जैसे हाथ उठाने में एवा रेडी हो गए ना, ऐसे ही त्याग करने में भी एवा रेडी season. कौन सी सभा होगी? निर्विघ्न पाप के दिल पसंद Adiós.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आजकल के हिसाब से दवाइयां खाना ये बड़ी बात नहीं समझो, क्यों कि कलयुग का वर्तमान समय सबसे शक्तिशाली फ्रूट ये दवाएं हैं। देखो कोई रंग बिरंग की तो है ना, ये तो एक कलयुग के लास्ट का ये फ्रूट है, तो खा लो प्यार से। दवाई खाना ये बीमारी याद नहीं दिलाती, अगर दवाई को मजबूरी से खाते हो तो मजबूरी की दवाई बीमारी याद दिलाती, और शरीर को चलाने के लिए एक शक्ति पर रही है, उस स्मृति में कहेंगे तो दवाई बीमारी याद नहीं दिलाएंगे, खुशी दिलाएंगे तो बस दो तीन दिन दवाई से ठीक हो जाए। कभी भी दवाइयां आजकल के तो बहुत नए फैशन है, कलयुग में सबसे ज्यादा है इन्वेंशन आजकल दवाइयां या अलग अलग थेरेपी कहते हैं, आज फलानी थेरेपी है आज फलानी, तो ये कलयुग का सीजन का शक्तिशाली फल, इसलिए घबराओ नहीं।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सेवा के साथी पाप तो सकाश देने वाले हैं, लेकिन साथी कौन? साकार का साथ तो परिवार का है। तो पाप ने देखा है कि तीन निश्चय में मेजॉरिटी ठीक चल रही है, लेकिन परिवार के साथ में निभाना, संस्कार मिलाना, एक एक को कल्याण के भावना से देखना और चलना, इसमें कई बच्चे यथाशक्ति बन जाते हैं। लेकिन बाप ने देखा कि जो परिवार के निश्चय में नॉलेजफुल होगे, सदा बाप समान

0: साथ में आते रहते वही नंबर वन या नंबर वन डिवीजन में आता, तो चेक करो भाव स्वभाव परिवार में होता जो भी छोटी छोटी गलतियां होती है विघ्न आती है वो परिवार के संबंध में ही आते। सबसे आवश्यक इस परिवार के संबंध में पास होना आवश्यक है। अगर परिवार में चलने में तोड़ने बहाने में कोई भी कमी होती है तो वो विघ्न छोटा हो या बड़ा हो लेकिन तंग करता है। ये क्यों, ये कैसे परिवार के कनेक्शन में आता है? तो क्यों के बजाय क्यों नहीं करना है, लेकिन हमें मिलकर चलना है परिवार की प्रीत निभाने, क्यों कि ये बाप का परिवार है, भगवान का परिवार, रवासी परिवार नहीं। नशा रहना चाहिए कि वाह बाबा, वाह ड्रामा, वाह मैं और वाह परिवार।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

मनन करने के लिए, सेवा करने के लिए, होम वर्क में रोज देते। अगर मनन करो को बिसी

Don't.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बेफिक्र बच्चन,
2: बेफिक्र
1: बाप दादा,
2: बाप दादा
1: सदा ही बेफिक्र बच्चा कर,
3: बेफिक्र बच्चा। फिक्र का है था पापा बैठे,
1: कारण क्या है, बेफिक्र क्यों है,
2: कल क्या है, ये फिक्र क्यों है। दिल बड़ी है,
3: बेफिक्र क्यों है, क्योंकि दिल बड़ी है।
1: जहाँ दिल बड़ी होती है ना, तो जो होना है वो हो जाता है, जो आना है वो आ जाता
3: है। तो दिल बड़ी कैसे हुई है,
4: बड़ा बाबा, बड़ी दिल, बड़ा परिवार।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा ने पहले भी सुना है, अगर दिल में कोई Yeah.

சிவன் பீக் டிக்ஷனரி Son.

Sabik.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कभी भी आप सभी का चेहरा ज्यादा गंभीर नहीं होना चाहिए, टू मच गंभीर भी अच्छा नहीं लगता, मुस्कुराहट तो होनी चाहिए। सीरियस नहीं चेहरा करना, क्या करे कैसे करे तो सीरियस हो जाते हो। बहुत मेहनत है, बहुत काम है, सीरियस हो जाते हो। लेकिन जितना बहुत काम उतना ज्यादा है मुस्कुराना। मुस्कुराना आता है ना, आता है। चलचित्र देखो, कभी ऐसे सीरियस दिखाते हैं क्या? अगर सीरियस दिखावे ना तो कहते हैं आर्टिस्ट ठीक नहीं है। अगर आप भी सीरियस रहते हो ना तो कहेंगे इसको
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सभी जयते हैं, अज्ञानी भी जयते हैं कि अब कुछ होना चाहिए, अब कुछ होना चाहिए, लेकिन ताकत नहीं है। आप बच्चों पे तो संकल्प को पूरा करने की ताकत है। फॉलो फादर है ना, ब्रह्मा बाप का जन्म ही दृढ़ संकल्प से हुआ।

sa Mela. Or yakya raja. Yakya ke brahmar.

0: संकल्प के कर तो दृढ़ संकल्प क्या नहीं कर सकता। ये तो एग्जाम्पल है आपके आगे।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सबसे ज्यादा

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: Just

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: डॉक्टर्स का वर्ग भी बाप दादा को सेवादारी ग्रुप देखने में आते हैं, सिर्फ थोड़ा समय इस सेवा को भी देते रहो। कई डॉक्टर्स कहते हैं हमको फुर्सत नहीं होती होगी, फिर भी कितने भी बिजी हो अमरना एक कार्ड जमा के रखो जिसमें ये इशारा हो, अट्रैक्शन का कोई स्लोगन हो तो, और आगे शफा चाहते हो तो ये एड्रेसेस है जहाँ आप रहते हो वहाँ की एड्रेस हो सेंटर की, यहाँ जाके अनुभव करो। कार्ड तो दे सकते, जब पर्चा लिख के देते हो ये दवाई लेना तो पर्चा देने के समय ये कार्ड भी दे दो। हो सकता है कोई कोई को तीर लग जाए क्योंकि डॉक्टरों की बात मानते हैं, और टेंशन तो सभी को होता है, एक प्रकृति के तरफ से टेंशन, परिवार के तरफ से टेंशन और अपने मन के तरफ से भी टेंशन। तो टेंशन फ्री लाइफ की दवाई ये है, ऐसी कुछ उसको अट्रैक्शन की छोटी सी बात लिखो तो क्या होगा, आपके सेवा के खाते में तो जमा हो जाएगा ना। ऐसे कई करते भी हैं, जो नहीं करते है वो करो। डबल डॉक्टर हो ना, सिंगल तो रही हो, डबल डॉक्टर है तो डबल सेवन। जब पेशेंट आती है आपके पास तो पेशेंट ही आएंगे, तो पेशेंट हमेशा डॉक्टर को भगवान का रूप समझते और भावना भी होती है। अगर डॉक्टर किसको कहते हैं ये चीज नहीं खानी है तो डर के मारे नहीं खाएंगे, और कोई गुरु कहेगा तो भी नहीं मानेंगे। तो मेडिकल वालों को सहज सेवा का साधन है, जो भी आवे उनको समय मुकरर करना पड़ता है, क्योंकि काम के समय तो आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन कोई ऐसा विधि बनाओ जो पेशेंट थोड़ा भी इंटरेस्टेड हो, उनको एक टाइम बुला के और उनको 15 मिनट आधा घंटा भी परिचय दो तो क्या होगा, आपकी सेवा बढ़ती जाए। संदेश देना वो और बात है, संदेश से खुश होते हैं, लेकिन राजयोगी नहीं बनते हैं। जब तक थोड़ा टाइम भी किसको अनुभव नहीं होता तब तक स्टूडेंट नहीं बन सकते। जिसको कोई भी अनुभव होता है वो छोड़ नहीं सकते। बाकी काम तो अच्छा है, किसके दुख को दूर करना कार्य तो बहुत अच्छा कर, लेकिन सदा के लिए नहीं कर। दवाई बीमारी फिर से आ जाती। ऐसी दवाई तो जो बीमारी का नाम निशान नहीं हो, वो है मेडिटेशन।
3: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सभी
1: कहते तो है मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, जब दिल से जो

मैं आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है। दूसरा महीन मैं, जो सुनाया मैंने ये किया, मैं ये कर सकता, अपमान इस रूप में आता है। तो आज बाप दादा ने ये महीन में जो कभी इसको समाप्त करना, देखो यादगार जो बनाते हैं उसमें भी जब बलि चढ़ाते हैं तो खुद नहीं बक बलि चढ़ते हैं, लेकिन किसको बलि चढ़ाते हैं? बकरे को। बकरे को क्यों?

0: कुशारत करके समाप्त कर सकते हो। बर्थडे पर आए हो बाप की तो कोई सौगात तो देंगे ना, तो बाप को और सौगात नहीं चाहिए। ये महीन
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अभी सर्वात्माओं को आपके सहयोग की बहुत बहुत आवश्यकता है, तो सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। कोई ना कोई सहयोग, चाहे मनसा का, चाहे बोल से कोई सहयोग दो, चाहे समन संपर्क से सहयोग दो। तो इस शिवरात्रि जन्म उत्सव विशेष स्लोगन याद रखो, सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। कम से कम जो भी आवे संपर्क में, संबंध में भी, कोई ना कोई तो संबंध में आता ही है, उसको और कोई खातरी नहीं करो, लेकिन हर एक को दिल खुश मिठाई जरूर खिलाओ। ये जो यहाँ भंडारे में बनती है वो नहीं, खुश कर दो तो दिल खुश करना अर्थात दिल खुश मिठाई खिलाना। खिलाएंगे उसमें तो कोई मेहनत नहीं है, ना टाइम एक्स्ट्रा देना है, ना मेहनत है। शुभ भावना से दिल खुश मिठाई खिलाओ, आप भी खुश, वो भी खुश, और क्या चाहिए। तो खुश रहेंगे और खुशी देंगे।
3: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: यज्ञ में हर एक का पाठ अपना अपना आवश्यक है। कोई भी एक्टर निमित सेवादारी अगर मिस होते हैं तो ऐसे नहीं मालूम नहीं पड़ता है। हर एक का पाठ अपना अपना महत्व है। कोई का भी पाठ अगर मिस हो जाता है तो फर्क पड़ता है। ये बाप का वरदान एक एक कामन पाठ दाढ़ी को भी जैसे भंडारी वाले वाला नहीं हो तो काम नहीं चले। सफाई वाला नहीं हो तो भी काम नहीं चले। और क्लास कराने वाला नहीं हो तो भी काम नहीं चले। हर एक एक्टर को ड्रामा अनुसार जो पार्ट मिला हुआ है उसको समझना चाहिए कि मैं भी विशेष निमित्त हूँ।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा ने पहले खजाने के तीन खाते जमा करो ये पहले बताए, तो रिजल्ट कर रही है। एक है अपने पुरुषार्थ से जमा का खाता भराना, दूसरा है सदा संतुष्ट रहे और दूसरे को भी संतुष्ट करे, बिना बिना संस्कार को जानते हुए भी संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, इससे संतुष्ट करने में कमी रह जाती है तो पुण्य के खाते में जमा नहीं होता। संतुष्टता पुण्य की चाबी है, चाहे रहना चाहे करना। और जहाँ सेवा में आ जाता है

0: semana.
1: No, carne.

0: Freddy.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जब काम मिलता है तो लिखने में भी मार्क्स जमा होती, अगर नहीं लिखा तो मार्क्स एक्स्ट्रा कम हो गई, नुकसान कर दिया। जो भी डायरेक्शन मिलती है, चाहे डायरेक्ट बाप द्वारा मिलती है, बहुत महीन धागा उनको आगे बढ़ने नहीं देता। वो समझते भी है कि ये महीन धागा रहा हुआ है, लेकिन ऐसी भी पुरुषार्थी है जो छोटी छोटी कामन बातों में हाजी करने से मार्क्स ले लेते, और हो सकता है कि वो मार्क्स इकट्ठी होते हुए
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कई बच्चे सोचते

0: Το γεια. Σίβα χαρτιρέτη. Πρέπει να πάω από τα μικρά χαρτί. Λίγεν. Πάω και τι Jesse Sarkar Rupa me Sada bachon ke saath rahe Aise Vatan me bhi Rehte मजा नहीं आता जैसे बच्चों को बाप के बिना कुछ सोचता नहीं ऐसे बाप को भी बच्चों के बिना और कुछ नहीं सोचता अकेले नहीं रहते साथ में रहते साकार में तो साथ का अनुभव साकार रूप में थोड़े पंजे कर सकते थे अब तो अव्यक्त रूप में हर बच्चे के साथ जिस समय चाहे जब चाहे साथ निभाती रहती जैसे चित्रों में दिखाती है ना एक एक कॉपी के साथ उन्होंने कृष्ण को दिखा दिया लेकिन ये इस समय का गायन है अब अव्यक्त रूप में हर बच्चे के साथ जब चाहे चाहे रात को 2 बजे या 2:30 बजे किसी भी टाइम साथ निभाती रहती साकार में तो सेंटर्स पर चक्कर लगाना कभी कभी होता लेकिन अब अव्यक्त रूप में तो पवित्र प्रवृत्ति में भी चक्कर लगाते बाप को काम ही क्या है बच्चों को समान बना के 人仮面なわけ。इसे मैं ही बिजी रहते।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अभी भी समय और संकल्प ना अच्छे में ना बुरे में होते, तो बुरे में नहीं हुआ ये तो बच गए, लेकिन अच्छे में जमा हुआ समझे। बचाओ समय को, संकल्प को, जितना अभी बचत करेंगे, जमा करेंगे, तो सारा कलंब उसी फरमान राज भी करेंगे और पूज्य भी बनेंगे। लेकिन एक अटेंशन रखना, ये अगर मानो आपका आज का दिन जमा कम देख करके दिल शिकस्त हो जाएंगे ना, ओके दिल शिकस्त नहीं होना, और ही समझो कि अभी भी हमको चांस है जमा करें। अपने को उमंग उत्साह मिलाओ, अपने आप से रेस करो दूसरे से, अपने आप से रेस करो कि आज अगर जमा हुए तो कल 10 घंटे दिल शिकस्त नहीं होना, क्योंकि अभी फिर भी समय है जमा कर, अभी फाइनल रिजल्ट का टाइम अभी अनाउंस नहीं हुआ है। जैसे लौकिक में पेपर की डेट फाइनल हो जाती है ना, तो अच्छे पूछा रहती है क्या करते हैं, दिल शिकस्त होते हैं या ऐसा होगा।

आने वाले हो, बचाओ बचाओ कहने वाले नहीं। आप चेक करो और चेक करके क्या करो, चेक करके फिर क्या करो, चेंज I'm

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: समय पर विजय।

ऐसे सरकमस्टेंस आने हैं जो का दूर भी बैठे हो, टच होगा, ये करना है ये नहीं करना है, इसीलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया है तो वर्तमान समय

叫，杰西叫，菲西，曼尔波蒂哥，control कर सको，फिर संकल्प，स्वप्न में भी टच नहीं करे, ऐसा माइंड कंट्रोल चाहिए। इसीलिए कहावत है, मन जीते जगत जीत, जैसे स्थूल कर्म इंद्रिया हाथ है, जहां जाओ जब तक जाओ तब तक आर्डर से चला सकते हो। ऐसे ऐसे नहीं, योग के समय अनुभव होता है, लेकिन कर्म के समय, व्यवहार के समय।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने पहले भी कहा है, कि अभी

stop.

Esse é isso.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा यही इशारा देते हैं, कोई भी समस्या को सामना करने के लिए सहज विधि है। पहले एकाग्रता की शक्ति, मन एकाग्र हो जाए। एकाग्रता की शक्ति डरने बहुत अच्छा करती, इसीलिए देखो कोर्ट में भी तराजू निशानी तराजू इसलिए दिखाती है, एकाग्र कांटा हो जाता तो कोई भी समस्या को जिस समय चारों ओर हल चलो उस समय अगर मन की एकाग्रता की शक्ति जहां वहां एकाग्र हो जाए, डरने हो जाए, किस परिस्थिति में कौन सी शक्ति कार्य में लाए। एकाग्रता की शक्ति दृढ़ता सुनाई दिलाती और दृढ़ता सफलता की चाबी। ऐसे अपने को एक एग्जाम्पल बना के औरों को प्रेरणा देते रहो, ठीक है ना।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: आप लोगों को पता है, पहले पहले जब बच्ची सेवा में गई तो ब्रह्मा कुमारियों को सफेद साड़ियां देख करके वो दरवाजा बंद कर देते थे, सही दरवाजा बंद कर देते थे। सफेद साड़ी ग्रस्तों को अच्छी नहीं लगती है, इसीलिए बच्चों ने सेवा कैसे शुरू की, उनके पोस्ट बॉक्स में डाला दी थी, क्योंकि पोस्ट
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: Awesome.

Watch.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कोई भी सेवा शुरू करते हो, चाहे देश में चाहे विदेश, बाप दादा यही कहते हैं कि पहले एक मत, एक बल, एक भरोसा।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बच्चे

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आज बाप दादा बच्चों की बातें बहुत सुनी, कहती है हंसाती है बाप दादा को, अच्छा कहती है ट्रैफिक कंट्रोल 3 मिनट नहीं होता। शरीर का कंट्रोल हो जाता है, खड़ी हो जाती है, लेकिन

Shalom.

ASMR 那个吗？Yeah.

Why?

stressa.

Krass.

जाओ, जितना समय जाओ।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

चमकते रहते हैं।

सभी पहुंच गए।

चमकते हुए

Scheiße.

Jesse Riley D. Or person.

Tiens, ma.

Então.

Peace.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Diviértete. Uscitete. Yeah.

Shh.

Jumpa lagi, Piadi. Is coming.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

Sí.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: ड्रामा में भी निश्चय बहुत जरूरी, क्यों कि ड्रामा में समस्याएं भी आती है और सफलता। अगर ड्रामा में पक्का निश्चय तो ड्रामा के निश्चय से जो निश्चय होती है वो समस्या को समाधान स्वरूप में बदल देता, क्योंकि निश्चय अर्थात विजय तो किसके ऊपर विजय बनता। परिवर्तन करने में एक सेकंड में समस्या परिवर्तन हो समाधान रूप बन जाती, हलचल में नहीं आएंगे, अचल रहेंगे।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: प्यार के पीछे कुर्बान करना क्या बड़ी बात है, दुनिया वाले तो अशुद्ध प्यार के पीछे जीवन भी देने के लिए तैयार हो जाते। बाप दादा तो सब
2: just

0: परसेंट हो, ज्यादा भले हो कम नहीं हो, बनना ही है। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा, ये निश्चय रखो। हम ही थे, हम ही है और फिर भी हम ही होंगे, ये निश्चय विजय बना दे।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा ने देखा जो बाप दादा ने, समय पर तो समय प्लान दिया है, वो बच्चों ने बड़े विधि पूर्वक उमंग उत्साह से किया है, कर रहे हैं। इसके बाप दादा सभी बच्चों

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: इस वर्ष में क्या बने, क्या बनेंगे, जो भी आपके चेहरे में देखे आपके चेहरे से फरिश्ता रूप दिखाई दे, फलानी हो फलाना हो नहीं, इसके लिए ज्वालामुखी योग कोई व्यर्थ नहीं। लाइट और माइट स्वरूप मुझे व्यर्थ को जलाओ, समृद्ध फरिश्ता नजर है जिसको भी देखे क्योंकि बाप के सिकी लते बचे तो बाप ने आपको खास कहां कहां से चुन करके अपना बना।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सभी का यही पुरुषार्थ है ना, ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता, योग बाप को सब प्रकार के संकल्प व जो भी कुछ प्रवृत्ति का कर्म का भोज वो दे दिया है ना, भोज दिया है या थोड़ा सा रह गए, क्योंकि थोड़ा भी बोझ फरिश्ता बनने नहीं देंगे। और जब पाप आए हैं बच्चों का बोझ लेने के लिए, तो बोझ देना मुश्किल है क्या? मुश्किल है या सहज है? जो समझते हैं दिया है, देखना सोच के हाथ उठाना, बोझ दे दिया है। अच्छा दे दिया, मुबारक हो, दे दिया है तो बहुत मुबारक हो। और जिन्होंने नहीं दिया है वो किस लिए रखा है? बोझ से प्रीत है क्या? बोझ अच्छा लगता है? देखो बाप दादा हर बच्चे को क्या कहते हैं, ओ मेरे बेफिक्र बादशाह बच्चे, तो बोझ का फिक्र होता है ना, बोझ लेने के लिए बाप आए, क्योंकि 63 जन्म से बाप देख रहे हैं, बोझ उठाते बच्चे सभी

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: क्रोध आने का कारण मेजॉरिटी देखा गया है कि गाना का ईशा और साथ में कुछ भी देख करके चलते हुए फेस्ट थॉट्स का बीज भी क्रोध को लाता है, क्योंकि फेस्ट थॉट्स है बीज। इस बीज से क्रोध भी उत्पन्न होता है और इसका एक शब्द निमित्त बनता है। उस एक शब्द को, बीज को अगर खत्म किया तो सहज हो जाएगा। वो एक शब्द है, क्यों ये क्यों, ये क्यों हुआ, ये क्यों किया, ये क्यों करते हैं। इस क्यों शब्द की बड़ी क्यों है। और देखो, क्यों शब्द इंग्लिश में लिखो कितना मुश्किल लिखा जाता है।

0: चाहते हो ना कि जल्दी जल्दी वार्धक्यता का झंडा सबके दिल में ले रहे, तो इसका कारण क्यों, क्या, कैसे हो?
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

जैसे जाओ वैसे अभी अभी

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कोई भी कर्म आरंभ करते हो आरंभ करने टाइम चेक करो मालिक बन के, मालिक बन के अथॉरिटी से कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाला कंट्रोलिंग पावर, रोलिंग पावर वाली आत्माओं साधारण कर्म शुरू हुआ, समृद्धि स्वरूप से कर्म आरंभ न करना और साधारण स्थिति से कर्म आरंभ करना, उसमें बहुत फर्क।

0: जैसे हद के मर्तबे वाले अपना कार्य करते हैं तो कार्य के सीट पर सीटोगे फिर कार्य आरंभ करते हैं। ऐसे अपने मालिक बन के स्वराज अधिकारी किसी सेट होगी फिर हर कार्य करो इस मालिक बन के अथॉरिटी चेकिंग को और बढ़ाना है। और इसकी निशानी है रिजल्ट सफलता सहज।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Site.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अंतकाल, जय जवान है, जय बूढ़ा है, जय तंदुरुस्त है, जय बीमार, किसका भी कभी भी आ सकता है। इसलिए बहुत काल का अभ्यास साखी बनकर अटेंशन दो, चाहे कितने भी प्राकृतात्माएं आपताएं आएंगी, लेकिन ये अशरीरी पन की स्टेज आपको सहज न्यारा और पाप का प्यारा बना दे। इसलिए बहुत काल शब्द को बाप दादा अंडरलाइन करा रही है। क्या भी हो, सारे दिन में स्टेज का अशरीरीपन की स्टेज का अनुभव बार बार करो, तब अंत मध्य फरिश्ता सो देवता निश्चित। समान बनना है, बाप निराकार और फरिश्ता है, बाप समान ब्रह्मा, बाप समान जैसे फरिश्ता रूप साकार रूप में देखा, बात सुनते बात करते कारोबार करते अनुभव किया, जैसे सब फरिश्ते हो।

सब का लक्ष्य ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात फरिश्ता बनना, शिव बाप समान बनना अर्थात निराकार स्थिति में से प्यार है ना, जिसे प्यार है उस जैसा बनना। जब संकल्प भी है

0: जैसा कार्य आप ब्रह्मात्माओं के सिवे और कोई नहीं कर सकता।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: हिम्मत कम तो नहीं होती, हिम्मत कम होती है तो बाप की मदद का भी अनुभव नहीं होता। बाप मदद देता है लेकिन कैच नहीं कर पाते, फायदा नहीं उठा सकते। इसीलिए सदा अपने को देखो, हिम्मत बढ़ाओ। कोई ना कोई ऐसी बात बुद्धि में रखो जिससे हिम्मत बढ़ती रहे। जितनी हिम्मत बढ़ेगी ना, तो हिम्मत के आगे और बातें आने भी कम हो जाएगी।

0: अच्छा है कुछ सोचना।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा भी देखते हैं कि सने बाप दादा से सब कहे, लेकिन सने के साथ शक्ति भी चाहिए। इसके लिए अमृत वेले को पावरफुल बनाओ। बैठते हैं बाप दादा बैठने की मुबारक देते हैं, लेकिन बैठने के वायुमंडल शक्तिशाली चाहिए। कोई कैसे बैठता है, कोई कैसे बैठ। अगर आप फोटो निकालो ना, और कुछ होना चाहिए। जो बाप दादा ने ज्वालामुखी योग का उसके ऊपर अभी और गहरा अटेंशन देना, पुरुषार्थ करते हैं सभी, लेकिन पुरुषार्थ के आगे तीव्र शब्द छोड़ो। अभी बाप दादा हर बच्चे को ये तो वास्ती है, इसमें जितना अटेंशन देंगे तो अटेंशन के साथ

0: manneke malik. Cik manneko ese jalao. Jaisi pao aur paha ko jalate. Jo chahte ho wo karte hai na. अभी आप जाओ यहाँ नहीं यहाँ रखो रख सकते हो ना ऐसे माइंड कंट्रोल जो चाहे वही मन संकल्प करे रोज रात को रिजल्ट देखो आज मन के रोलिंग पावर कंट्रोलिंग पावर कहाँ तक रही अभी व्यर्थ को समाप्त जल्दी जल्दी करना चाहिए तब समर्थ बन वायुमंडल में समृद्धपन की शक्ति फैलाओ बाप दादा तो बच्चों का दुख दर्द पुकार सुन करके बच्चों द्वारा अभी जल्दी समापत्ति कराने चाहते सुनाया ना पुरुषार्थ सब कर रहे लेकिन अभी ऐड करो दीवार करना ही है करेंगे देखेंगे ये के नहीं चले
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो यहाँ है खुशियों का संगम

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सबसे अच्छे से अच्छा रंग कौन सा है? अविनाशी रंग कौन सा है?

Yep.

Сорси Сэдди.

shit.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अच्छा, दूसरा शब्द क्या कहते हैं? मेरा स्वभाव। अभी स्वभाव शब्द कितना अच्छा है। सो सदा अच्छा होता है। तो मेरा स्वभाव, स्वभाव, स्व का भाव अच्छा होता है, खराब नहीं होता। तो ये जो शब्द यूज करते हो ना, मेरा स्वभाव है, मेरा संस्कार है। अभी इस भाषा को चेंज करो। जब भी मेरा शब्द आवे वो याद करो, मेरा संस्कार ओरिजिनल किया। ये कौन बोलता है? आत्मा बोलती है मेरा संस्कार। तो जब ये सोचेंगे ना, तो अपने ऊपर ही हंसी आएंगे, आएंगे ना हंसी, हंसी आएंगे ना, तो जो किट किट करती हो ना, वो खत्म हो जाएंगे। इसको कहते हैं भाषा का परिवर्तन करना, अर्थात हर आत्मा के प्रति स्वमान और सम्मान में रहना। स्वयं भी सदा स्वमान में रहो और को भी स्वमान से देखो, स्वमान से देखेंगे ना, तो फिर जो कोई भी बातें होती है जो आपको भी पसंद नहीं है, कभी भी कोई किट किट होती है तो पसंद आता है, नहीं आता है ना, तो देखो ही एक दो को स्वमान से। ये विशेष आत्मा है, ये बाप के पालना वाली ब्रह्मन आत्मा है। ये कोटो में कोई कोई में भी कोई आत्मा है। सिर्फ एक बात करो, अपने नैनों में बिंदी को समा दो। बस एक बिंदी से तो देखते हो, दूसरी बिंदी भी समा दो तो कुछ भी नहीं होगा, मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। बस ये आत्मा आत्मा को देख रही, आत्मा आत्मा से बोल रही है। आत्मक वृत्ति, आत्मक दृष्टि बनाओ। समझा क्या करना है? अभी कभी नहीं कहना मेरा संस्कार, नहीं कहना स्वभाव कहो तो स्व के भाव में रहना, ठीक है ना?
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

好き。

अभी समय।

शक्ति द्वारा। टचिंग पावर, कैचिंग पावर बहुत आवश्यक। ऐसा समय आएगा जो ये साधन कुछ नहीं।

अपने में चेक।

Sesame.

प्यास चाहिए। इसका

चाहिए। आप भी रियल्स।

Nice.

उसमें जितने रिजल्ट चाहते हो उसे अधिक

0: Shavakarnika. Parivartan. Karnika. Or attention.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: पत्थर में अपने को नहीं रखो, स्वतंत्र।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Come on. प्यार की, संतुष्टता की, खुशी के अचले देने की आवश्यकता है। दुखियों को सुख की अंजलि देनी, एक तो मनसा सेवा द्वारा सकाश दो और दूसरा अपने चेहरे और चलन द्वारा पाप को प्रत्यक्ष करो।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: एक गाना नहीं करो इसकी, अपने बोल।

इकट्ठे में चेक करूं कितने व्यर्थ हुए और कितने सत्य।

tiene un polo. Mira todo vacío.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कई बच्चे ओले ना देते कि कभी कभी जिस समय जो शक्ति की आवश्यकता होती है वो समय पर नहीं आती। लेकिन इसका कारण क्या? सर्वशक्तियां थी, लेकिन शक्ति नहीं आती है उसका कारण है कि आप अपने मास्टर सर्वशक्तिवान के सीट पर सेट नहीं होते। इसीलिए बिना सीट के ऑर्डर कोई नहीं मांगता, तो सदा अपने सीट पर सेट रहो। कभी फेस्ट तार्स चलते हैं, वह कभी टेंशन आता है तो सही स्वमान

0: में सेठ नहीं होते हैं तो जहाँ स्वमान नहीं वहाँ क्या होता है जानते हो ना, ते अपमान। या तो स्वमान है या तो देमान।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा आज भी सभी बच्चों को चाहिए

Срап.

के पार्ट में भी।

Yes.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: जिस भी सेवा स्थान का सेवक का वृद्धि होती है और निर्विघ्न होती है, उसका कारण क्या होता है जानते हैं? सेंटर्स में वीआईपी की सेवा बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन स्टूडेंट की पालना कम करते हैं, इसीलिए स्टूडेंट पढ़ते नहीं है और स्टूडेंट रेगुलर सेवा के उमंग उत्साह में नहीं रहे। क्लास करेंगे, जो कहेंगे वो करेंगे, लेकिन अपने उमंग उत्साह में नहीं है। तो ये रिजल्ट है पालना की। मुबारक।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कई बच्चे सोचते हैं सफल तो करें लेकिन विनाश हो जाए कल परसों तो हमारा तो काम में आए ही नहीं, हमारा तो सेवा में लगा नहीं।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: शिवा जो स्वयं को वा दूसरे को डिस्टर्ब करे वो शिवा नहीं, वो स्वार्थ है शिवा नहीं। और नीचे ऊपर होती है निमित्त कोई न कोई स्वार्थ होता है, चाहे अपना चाहे दूसरे का स्वार्थ पूरा नहीं होता। सेवा में डिस्टर्बन होती, सभी एकदम न्यारी और प्यारी बन करती, स्वार्थ से न्यारी और सर्व के संबंध में प्यारे, चारों और अटेंशन प्लीज।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: आज की बात व्यर्थ संकल्प के सभापति की बोल नहीं जाना, बाप दादा के पास रिकॉर्ड तो पहुंच ही जाते, तो बाप दादा देखेंगे कितने तीवर पुरुषार्थी बच्चे हैं और एक दो को भी भगवत साधे उसकी गलती का मन में संकल्प करते हो, ये करते हैं ये करते हैं ये करते हैं ये भी खत्म करो, उनको सहयोग दो, श्रेष्ठ भावना दो, ऐसी सेवा करते सारे संगठन को श्रेष्ठ संकल्प वाले बनाना ही है। कोई से डर कभी भी कोई एक दो के प्रत कोई भी और भावना नहीं, शुभ भावना शुभ कामना, ठीक है ना? बहुत अच्छा।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बोल, में निर्माण बनो, बोल में निर्माणता कम नहीं होनी चाहिए। भले साधारण शब्द बोलते हैं, समझते हैं,
2: और शायद

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप मददगार जरूर है और अंत तक रहेगी, ये गारंटी है, लेकिन किसके किसके मददगार? जो हिम्मत का पहले पांव आगे कर दे, फिर बाप मदद का दूसरा पांव उठाने में संपूर्ण मदद कर दे। हिम्मत का पांव उठाओ नहीं और श्रम को बाबा

Money.

सबसे महान

Bibi dir.

பணி ஆத்மா. ஜெய மாயா ஜெய பிரகிருதி.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
0: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कोई मिसिंग है जो पढ़नी चाहिए। Yeah.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आज बाप दादा व्यर्थ संकल्पों की सभापति करने के लिए सभी चारों ओर के बच्चों को हिम्मत दे रहे हैं कि अभी से व्यर्थ को सभापत कर सदा समृद्ध बन समृद्ध बनाओ। सिर्फ संदेश नहीं, समृद्ध बनाओ, समृद्ध बनो, समृद्ध बनाओ। व्यर्थ को समापत्ति दिवस बनाओ। हो सकता है जो समझते हैं कि व्यर्थ संकल्प अपने को भी नुकसान पहुंचाती है, समय बर्बाद करती है, चेहरे पर सदा खुशनुमा खुशकिस्मत का अनुभव कम कराता है। इसलिए अब इस समापति का समय समीप लाना है।

0: go. I'm gonna. जो समझते हैं कि अभी समापति के समय को समीप लाना है, उसके लिए व्यर्थ को समाप्त करना ही है, करना है नहीं, करना ही है, स्वप्न में भी नहीं है। संकल्प तो छोड़ो, लेकिन स्वप्न में भी नहीं है। ऐसे हिम्मत वाले बच्चे जो अपने को समझते हैं, वो हाथ उठाओ। मन का हाथ उठा रहे हो ना? पाए का हाथ तो बहुत ईजी है, लेकिन मन का हाथ उठा रहे हो? जो मन का हाथ उठा रही है वो हाथ उठाओ।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अभी

안.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: समझते देखा बाप ने, समझ बहुत अच्छी। लेकिन समझ के साथ अपनी चेकिंग भी अच्छी करते हैं, लेकिन चलते चलते कोई बातें ऐसे आती है जो तीव्र पुरुषार्थ को साधारण पुरुषार्थ में

ऐसे बाप दादा ने देखा है कि कई बच्चे लक्ष्य अपने

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: दूसरे किसको नहीं देखना, सी फादर, सी ब्रह्मा मदर, दूसरा कड़े न कड़े करेंगे तो सब,
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: 있었다. 이튿날의 제주를 보니까 사던 길 보초다 사사던 로그 리제스트
1: Bobby.
0: But

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: दादियों ने डबल विदेशों को भी मर्ज किया, डबल विदेशी

siete Atelo. Atelo. Beethoven, Benjamin.

0: vocês. Tá de o quê? Pode ler. Tá de querente. Tu tá de negar. Que mochê.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: Is that

Чоти бендо сваропо. Парамдаме бабке сад.

0: सागर में आ जाओ।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: इस चाबी को संभाल के रखना दृढ़ता ही सफलता की चाबी, और सफलता पाप के समान बनने सहज साधन। सदा निश्चय और निश्चित भावी है, स्वराज अधिकारी और विश्वराज अधिकारी, ये दोनों निश्चित है। ऐसे नशे में फकर में सदा उड़ते रहो।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: ये सब साधन आप बच्चों के सेवा के सहयोग के लिए निकले। माँ बाप जब समाचार सुनते हैं, ये ईमेल है, ये है, खुश होते हैं। वाह बच्चे वाह, इतना सहज साधन। ब्रह्मा बाप को भी साकार में नहीं मिला, लेकिन बच्चों के पास खुश होते। सर्व सेवा का साधन समझ के यूज करना सेवा के लिए साधन, क्योंकि विश्व कल्याण करना है तो ये भी साधन सहयोग देते। साधनों के वश नहीं होना, लेकिन साधन को सेवा में यूज करना। ये बीच का समय है जिसमें साधन मिले। हाथ में भी कोई साधन नहीं थे इतने, और अंत में भी नहीं रहेंगे। ये अभी के लिए सेवा बढ़ाने के लिए, लेकिन साधन है साधना करने वाले आप। साधन के पीछे साधना कम नहीं हो। बाकी बाप दादा खुश होते हैं, सीन भी देखते हैं बच्चों के फटाफट कर रहे हैं। बाप दादा आपके ऑफिस काफी चक्कर लगाते हैं, कैसे काम कर रहे हैं। बहुत बिजी रहती है, ये हंसती है। अच्छी तरह से ऑफिस चलती है ना। जैसे एक सेकंड में साधन यूज करते हो, ऐसे ही बीच बीच में कुछ समय साधना के बिना का। सेकंड भी निकालो, अभी साधन पर हाथ है, और अभी अभी एक सेकंड साधना बीच बीच में अभ्यास करो। आया, उसके बीच में क्या पांची से कर नहीं निकाल सकते, इतना है कोई बिजी, ऐसा कोई बिजी है जो 5 मिनट भी नहीं निकाल सके, 5 सेकंड चलो, है कोई ऐसा?
4: लिंक को नहीं तोड़ो, नहीं जोड़ते रहो,
3: समय निकाल सको, सीकर निकालो, मिनट निकालो, निकालो जरूर। हो सकता है पांडा, हो सकता है टीचर्स, हो सकते हैं और जो ऑफिस में काम करती है वो, हो सकते हैं, हो सकता है हाथ तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अभी

Chill, mate.

见。

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कल से नहीं, आज से, अभी से, सारे दिन में दोनों बाप से प्यार तो कभी
2: हो सकता है।

0: जा नहीं सकते तो इनों को मुक्त करो, क्योंकि बाप आए हैं ना तो सारे विश्व के बच्चों को वर्षा तो देंगे ना, आपको जीवन मुक्ति का वर्षा देंगे, लेकिन सभी बच्चे तो है ना उनको भी वर्षा तो देना है ना, तो उनों का वर्षा है मुक्ति, आपका वर्षा है जीवन मुक्ति। जब तक मुक्ति नहीं देंगे तो आप भी जा नहीं सकते। इसके लिए ये ड्रिल करो, 24 वाली, 24 घंटे है, रात और दिन के 24 घंटे है, और 24 बार करना नींद, नींद के टाइम नींद भले करो, बाप दादा ये नहीं कहते कि नींद नहीं करो, नींद करो लेकिन दिन में बराबर।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: नहीं ला सकते।

0: बस खुश रहो, सबको खुशी दो। कोई भी बात अच्छी नहीं लगे तो भी खुशी नहीं कमाओ, बात को चला लो, खुशी नहीं चली जाए। बात तो खत्म हो ही जानी है लेकिन खुशी तो साथ में चलनी है ना। तो जो साथ में चलने वाली है, छोड़ने वाले को पास में रख देते हो और साथ में चलने वाले को छोड़ देते हो, ये नहीं कर। अमृत वेले रोज पहले अपने आप को खुशी की खुराक खिलाओ।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अभी से आपके चेहरे पर फियरत की समापति और सदा स्मृति स्वरूप की झलक चेहरे और जलन में आनी चाहिए। ये माया के जो शब्द है ना, बाप दादा खुश है, भाषण बहुत अच्छे कर रही है, लेकिन जैसे भाषणों का अभ्यास करते करते होशियार हो गए होता, ऐसे अभी चेहरे और चलन से खुशी का वरदान दो, ये अभ्यास करो, क्योंकि समय कम मिलेगा। सब अचानक

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी सेवा और स्व दोनों का बैलेंस ऐसा सेवा स्थान बनाओ जो सबके आगे एक एग्जाम्पल हो। जैसे म्यूजियम होता है ना, तो सब एड्रेस देते हैं ना, शहर में कहाँ भी जाओ तो एड्रेस देते हैं, यहाँ जाओ यहाँ जाओ। ऐसे जिसको शांति चाहिए, हिम्मत चाहिए, वो मगुत्सा चाहिए, वो आपके एड्रेस में पहुंचे, फैल जावे। अगर शांति का वाइब्रेशन लेना हो तो यहाँ जाओ, अगर हिम्मत भरनी हो तो यहाँ जाओ। ऐसे स्पेशल बनाओ, ठीक है ना। बाकी तो सब म्यूजियम तो जाता, अध्यात्मक म्यूजियम भी है, भाषण भी है, सब कुछ है, लेकिन कोई विशेषता ऐसी स्थान की बनाओ जो भ्रमणों में और पैर में भी ये प्रसिद्ध हो जाए कि ये चाहिए तो यहाँ जाओ। क्योंकि आजकल लोगों को सुनने की आदत तो है लेकिन अनुभव करने की आदत नहीं। तो अगर अनुभव करने जाए तो आपके पास ये प्रसिद्ध हो जाए कि अगर आपको अनुभव करना है तो ये एड्रेस।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सबसे पहला खजाना है ज्ञान का खजाना। जिस ज्ञान के खजाने से इस समय भी आप सभी मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कर रहे। जीवन में रहते, पुरानी दुनिया में रहते, तमोगुणी वायुमंडल में रहते, ज्ञान के खजाने के आधार से इन सब वायुमंडल वाइब्रेशन से न्यारे मुक्त हो कमल पुष्प समान न्यारे मुक्त आत्माए दुख से चिंताओं से अशांति से मुक्त हो जीवन में रहते बुराइयों के बंधनों से मुक्त हो, व्यर्थ संकल्पों के तूफान से मुक्त हो, मुक्ति इस ज्ञान के खजाने का फल प्राप्ति। चाहे व्यर्थ संकल्प आने की कोशिश करते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, लेकिन ज्ञान अर्थात समझ कि व्यर्थ संकल्प व नेगेटिव संकल्प का काम है आना, और आप ज्ञानी तो आत्माओं का काम है इनसे मुक्त न्यारी और बाप की प्यारी रहना। तो चेक करो ज्ञान का खजाना प्राप्त है, भरपूर है, संपन्न है या कम है। अगर कम है तो उसको जमा करो, खाली नहीं।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Savoir.

תודה רבה.

इसमें अटेंशन देना है, इसके हाथ उठाओ। सुबह को उठते ही ये बाबा शब्द याद कर, पाप देख

शब्द बोलना नहीं, ये सभा में हाथ उठाया ये बोलना नहीं।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: झमेला मुक्त होने की विधि सबसे सहज है कि पहले स्वयं को झमेले मुक्त कर, दूसरे के पीछे नहीं पड़ो। ये स्टूडेंट ऐसा है, ये साथी ऐसा है, ये सरकमस्टेंस ऐसी है, उसको नहीं देखो लेकिन अपने को झमेला मुक्त करो। जहाँ झमेला होना वहाँ अपने मन को दिल को किनारे कर। आप सोचते हो ये झमेला पूरा होगा ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा, हमारी सेवा भी अच्छी, हमारी अवस्था भी अच्छी। लेकिन झमेले पहाड़ के समान है, क्या पहाड़ से माथा टकराना है? पहाड़ टेकना क्या स्वयं किनारा कर लो, या उड़ती कला से उस झमेले के पहाड़ के भी ऊपर चल, तो पहाड़ भी आपको एकदम सहज अनुभव। मुझे बनना है अमृत वेले से, ये स्वयं से संकल्प करो कि मुझे झमेला मुक्त बनना है। बाकी है झमेलों की दुनिया, झमेले तो आएंगे, आपकी दुनिया आपका सेवा केंद्र है, तो आपकी दुनिया ही वो है तो वही आएंगे ना। आप एमिट का या लंदन जाएंगे क्या पेपर देने के लिए, सेंटर बड़ी देने? झमेला नहीं आवे ये नहीं सोच, झमेला मुक्त बनना है ये सोच।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: ब्रह्मा बाप के पुराने बच्चों के वृद्ध ये बोल रहे कि अगर कोई कहता है कि शिवा है ही नहीं, बहुत करती है लेकिन शिवा दिखाई नहीं देती है, कोई सेवा के लिए मिलता नहीं, तो ब्रह्मा बाप क्या कहता था कि जंगल भरा हुआ है और शिकारी कहे कि शिकार नहीं मिलता, ये हो सकता है शिकारी को परखने की शक्ति देखने की वो जो देश आंख चाहिए वो नहीं, बाकी जंगल में शिकार नहीं हुई हो ही नहीं सकता। कितनी संख्या बढ़ रही है, चाहे छोटा गांव है चाहे बड़ा शहर है, सब जगह संख्या बढ़ रही है। संख्या बढ़ रही है और सेवा नहीं हो ये कैसे?
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आराम का अर्थ है आराम फिर करना। आराम अर्थात बाप को याद करके फिर करना। वो आराम नहीं करना धनलपन।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Fire.

saatan ko pinyog karnaya karana siyate isliye aaj ki pap saman banne ki divas par vishesh दूर रहे होते हुए दूर रहना है ही नहीं और कहीं हम तो वैराग्य है वो बात अलग है हम तो है ही वैरागी कुछ है ही नहीं तो होगा कैसे होते हुए नॉलेज और विश्व कल्याण के भावना से Okay.
अब अपने बेहद

छूट नहीं सकती। आप फ्रिकिया के जा रहे हैं, ब्रह्मांडों का स्थान फ्रिकिया में कहाँ दिख रहे हैं? चर में दिख रहे हैं। Found it.

0: Chose.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

fanno per mamma.

0: duele. On sigila de bachoko. Jo falo karne wali hai. Ono ko vishesh. Yaad pyar de de. Va bache va.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अच्छा मधुबन निवासी,

चाहे

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

the sun.

चलते चलते अगर पाप के दी हुई विशेषताओं को अपनी विशेषता समझ अब

0: नहीं हो, मैं भी सब जानता हूं। ये मेरा संकल्प ही यथार्थ है, ऊंचे ये मेरे पद का अपमान का संकल्प, ये भी सुख्यम अपवित्रता का अंश। तो अपने को चेक करो, किसी भी प्रकार का अपवित्रता के व्यर्थ संकल्प का कोई अंश तो नहीं रह गए, क्योंकि अभी पवित्र दुनिया के स्थापना का समय समीप लाने वाले आप परमात्म प्यारे बच्चे निमित्त हो, तो जो निमित्त आत्माएं हैं उन्हों का वाइब्रेशन चारों ओर फैलते, तो चेक करो किसी भी प्रकार का व्यर्थ संकल्प भी अपने तरफ खींचता तो नहीं।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

awesome.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: उस करके बैठ जाए

स्वरूप हो, सच्ची सेवादारी हो, स्वार्थी सेवा नहीं। एक होता है कल्याण की भावना की सेवा और दूसरी होती है स्वार्थ से मेरा नाम आ जाएगा, मेरा फोटो आ जाएगा अखबार में, मेरा टीवी में आ जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, कई साधन ब्राह्मणों में नाम हो जाएगा। ब्राह्मण ही बहुत आगे रखेगी पूछेगी, ये सब भाव स्वागत की सेवा के लिए जो सच्चा सेवादारी है। आजकल के हिसाब से शिविरों की स्थापना के बाद दूसरी थी, लेकिन इस समय प्रत्यक्षता के हिसाब से अभी सेवा आपके पास आएगी, आप सेवा के बिचारी नहीं, आपके पास सेवा

무슨 소리야? 써맛있대. 그냥 거의 밀리도 못하지. 아, 여기 비.

0: उसमें भी आपका शेयर जमा हूं, क्योंकि संजय डायमंड बनाने हैं ना, तो हिसाब किताब भी समझ लो। ऐसे लंबे नहीं चलो, ठीक है? हो गया दिन बहुत सोचो मे साहब किताब कच्चोपरा। आपको कुछ करना नहीं पड़ता है ऑटोमेटिक।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कोई कैसा भी हो, स्वयं को चलने की विधि सीखो। कोई क्या भी करता हो, बार बार विघ्न रूप बन सामने आता हूं, लेकिन ये विघ्नों में समय लगाना आखिर ये भी कब तक, इसकी भी समाप्ति समारोह तो होना है ना, दूसरे को नहीं देखना। बदले तो हम बदले, ये बाहर हटे तो मैं आगे बढ़ूं, न बाहर हटेगा न आप मंजिल पर पहुंच सके, इसलिए अगर शुभ भावना है आत्मा के प्रति तो इशारा दिया और मन बुद्धि से खाली खुद अपने को उस विघ्न स्वरूप बनने वाले के सोच विचार में नहीं डालो। जब नंबर वार है तो नंबर वार में स्टेज भी नंबर वार होनी है, लेकिन हमको नंबर वन बनना है। ऐसे विघ्न परिवर्तन करता है विजय की माला उसी के गले में पड़ती है। शुभ भावना से अगर उसको परिवर्तन कर सकते हो तो करो, इशारा तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर दो और स्व परिवर्तन कर आगे उड़ते चलो। ये विघ्न रूप भी सोने का लगाव का धागा है, ये भी उड़ने नहीं देगा, ये बहुत महीन और बहुत
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सो अब मैं

स्वराज।

one.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: विश्व में एक तरफ भ्रष्टाचार अत्याचार की अखनों की, दूसरे तरफ भ्रष्टाचार अत्याचार

Eita!

sin.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: gobernador Mataniban nirantar syaktyo ka anbao garao mansa dwara vibration dwara facha dwara
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा एक एक बच्चे के मस्तक में संपूर्ण पवित्रता की चमकती हुई मणि देखने जैसी नैनों में पवित्रता की झलक पवित्रता के दो नैनों के ताड़ी से चमकते हुए देखने बॉल में मधुरता विशेषता अमूल्य बॉल सुनने जाए
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

जुदा न थे न जुदा रहेंगे, विदा न होंगे न विदा कहेंगे। धरती गगन हो, मधुबन वतन हो, बाबा दादी संग सदा रहेंगे, बाबा दादी संग सदा रहेंगे। याद में बाबा के सदा मगन, ओ दादी आपका यही कथन, ओ दादी आपका यही कथन।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: जब कंबाइंड सर्वशक्तिवान बाप दादा कंबाइंड, फिर अकेले क्यों बन जाते अगर आप कमजोर भी हो तो? बाप दादा तो सर्वशक्तिवान है ना, अकेले बन

0: उस समय सहयोगी शिवबाप परम धाम से आए क्यों है, किस लिए आए? बच्चों के सहयोगी बनने के लिए आए। देखो ब्रह्मा बाप भी
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

Apple.

0: noche a ti.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Satan. Santo Stere Nevali. Santo Stere Mariauko.

假如Chama

讲。

संतुष्ट आत्मा। मैं संतुष्ट

Tiens, ça

そっとした、キステティ、パラステティケオバル、サダビデイ、パラステティ。

कितनी भी परिस्थिति सामने आए, लेकिन संतुष्ट मणि के आगे हर Yeah.

ちゃん。Is

Just

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जब व्यर्थ समाप्त हो जाएगा तो सदा श्रेष्ठ संकल्प का खजाना कमाल दिखाएगा।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सेवा का पल रहा थोड़ा

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: मत रख

जल्दी से। Sick.

Giorni mi te. Yeah, we should.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

याद करने वाले बच्चे वाह बाप के दिल में बच्चे और बच्चों के दिल में बाबा सभी के मन में।

जो दिल

Pop Kajikit Papa Pachunga Bijikit Papa Arar Kisikil Be Papa Kitchen स्पष्ट दिखाई दे रहे, कोई गीत के रूप में, कोई दिल की आवाज के रूप में, ये नैनो द्वारा अपने

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: साथ नहीं
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आजकल के हिसाब से सुनने सुनाने की शक्ति के बजाय फिरती द्वारा

मनसा शक्ति द्वारा।

Pata varam. Change karna. Uski avashyakta.

मनुष्यों के वृत्ति को, दृष्टि को, कृति को परिवर्तन कर सकती, आज आवश्यकता है मन की।

a pillar vos. Ja sé, prestatge. Qui pot de gelarir? A bé. Are you?

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: मधुबन निवासी अर्थात गरम में मधुरता और वृत्ति में if
3: जाएंगे तो
2: और कितना सामान मिलता है अगर मधुबन वाला कहाँ भी जाता है तो किस नजर से सभी देखते हैं।
3: मतलब
2: मधुबन वाला है मधुबन वाला है तो इतना अपना स्वमान सदा इमर्ज रखो मर्ज नहीं इमर्ज।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा सदा कहते हैं कि फॉरेनर्स इस जन्म के फॉरेनर्स है, लेकिन अनेक जन्म के ब्राह्मण परिवार के हैं। अगर आप लोग विदेशी नहीं बनते तो विदेश के बिना बिना देशों की सेवा कैसे होती? अगर आप विदेश के रूप में नहीं आते तो बाप दादा को सब देशों की भाषा का या क्लास रखने पड़ते, तैयार करने पड़ते। तो आप लोग जो बिना बिना देश में गए हो वो सेवा के प्रत गए। समझा? समझ में आया क्यों गए? ओरिजिनल आप ब्राह्मण आत्मा हो, विदेशी आत्मा नहीं। बिना बिना विश्व की सेवा के लिए देखो, भारत में भी हर भाषा के बच्चे आए हैं और सेवा कर रहे हैं। नहीं तो पहले एक ही ग्रुप था, सिंध का ग्रुप, और धीरे धीरे बिना बिना देश का, चाहे भारत के चाहे विदेश के, आते रहे और बढ़ते रहे। ये भी ड्रामा में बना हुआ खीर। वैसे भी पहले जड़ में थोड़ी होती है, फिर धीरे धीरे तना और शाखें निकलती, तो फाउंडेशन बना सिंध के देश के निमित्त, फिर धीरे धीरे फिर क्या बढ़ता गया। भाषाएं और देश की शाखाएं, आप शाखाओं में नहीं हो, आप तो बाप के साथ।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Yeah.

し。

लाइफ में हद का मेरा पन, हद का मैं पन से न्यारी, रही है उसकी रिजल्ट। बीमारी कितनी भी है एक ही शब्द पक्का है, कोई भी पूछता दादी कुछ दर्द है, दादी कुछ हो रहा है, क्या उत्तर मिलता? कुछ नहीं। क्यों? निशानी देख रहे तो जब ब्रह्मा बाप की तो बात कहते हैं, तो कहते हैं उसमें तो बाप था ना, लेकिन दादी तो आपके साथ प्रभु में रही, सेवा में साथी रही, तो जब एक बन सकता है निर्स्वार्थ स्थिति में, तो क्या आप सभी नहीं बन सकते?

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: विश्वास

Cícaro. Dinose.

traditions. Dwara. Sit kalyani nahi, sot kalyani.

Attention, the light.

चाहे जितना चाहे उतना बाप से सहयोग मिल सकता है। तो सुना क्या करना है अभी? मनसा सेवा को बढ़ाओ, उस हलचल

Ich wollte

जब चक्कर लगा के चारों देश विदेश के

Interessant.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: नहीं करता।

சாலை வந்த

Samantha. Afarga.

egoísta, man.

Yes. Make your name like

Get thief.

Satimanal. Flash.

Exacto.

sais. Ton noble cœur sait. Tarkbija. Come back.

भरपूर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही सदा रहते हैं। कोई भी बात आए खुशी नहीं ले जैसे अभी खुशी का चेहरा है, स्नेह प्रेम का चेहरा, ऐसे बोलो रह सकते हैं। जो समझते हैं सदा रहेगा, पीती सो पीती, अभी सदा रहेगा, वो हाथ उठाओ। अच्छा, सभी उठा रहे, मैं जा रही हूँ।

Yes.

خوش مزاج چهره ایسے

amigo. Cuscuz.

のが欲しいです。ごいごらくね、パッタだね、ペチョペチョ。Come on, Keith.

Wish.

घुसेंगे और खुशी बांटेंगे। यहां भी कोई बात हो गई तो खुशी गायब हो जाएगी। नहीं, खुशी गायब होने की बात ही नहीं है। आज से सभी चेक करना, खुशी को जाने नहीं देना। है ताकत, है, हाथ उठाओ। अच्छा, देखना आपके सोन वाले

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

are careful. What badalna nahi chahiye. Shail roop mein kehte hai, aaj mujhe badi ekant chahiye. Kyun chahiye? Karna seva ya parivar se kinara hai. Aur kehte hai shanti chahiye. Ekant. आज मूड मेरा ऐसा है, मूड नहीं बदले करो, कारण कुछ भी हो, लेकिन आप कारण को निवारण करने वाले के कारण में आने वाले निवारण करने वाले का क्या लिया है? कंट्रेस्टर होना तो क्या कंट्रेस्ट लिया है कि प्रकृति के मूड भी चेंज करे, प्रकृति को भी चेंज करता है ना, तो प्रकृति परिवर्तन करने वाले अपने मूड को नहीं परिवर्तन कर सकते. मूड चेंज होती है कि नहीं? हाँ, होती है, कभी कभी होती है. फिर कहेंगे सागर के किनारे पर जाके बैठते, ज्ञान सागर नहीं स्थूल सागर. फॉरेनर्स ऐसे करते हैं ना, करते हैं. या कहेंगे आज पता नहीं अकेला अकेला लगता है, तो पाप कहा कंबाइंड रूम कहा गया, अलग कर दिया. कंबाइंड से अकेले हो गए. ये प्यार, ये इसको प्यार कहा जाता है. तो किसी भी प्रकार का मूड, एक होता है मूड ऑफ, वो बड़ी बात, ठीक है. मूड परिवर्तन होना ये भी ठीक. मोटा वाले तो बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के खेल दिखाते हैं. बाप दादा देखता है, बड़ों को बहुत

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: एक बात, बाप दादा इशारा देते हैं कि चलते फिरते संगठन में भी रहते हो, कोई ना कोई साथ में सेवा में होता ही, तो एक दो को आत्मा के रूप में देखो, आत्मा के रूप में देखते भी है, अभ्यास भी करते हैं, लेकिन जब आत्मा देखते हो तो
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा के पास कोई कोई जाए छोटा सा नेकलेस बना के लाओ, जाए कंगन बना के लाओ, जाए बड़ा हार बना के लाओ, लेकिन लाना जरूर, हाथ खाली नहीं आना है ना, हिम्मत बनाएंगे ना बाप दादा तो कह रही चलो जैसे किसको टांग नहीं होती है ना तो लकड़ी की टांग बना के दे देते चलता तो है ना, तो आप हिम्मत की टांग दे दो, लकड़ी की नहीं देना हिम्मत की। बहुत
2: अंदर क्या हालत है, बाहर का शोर

0: 亲什么吧我这把那儿打的把这个
1: 啊孙这些是是吧里丢
2: सत्यम शिवम सुंदरम
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा ने देखा है कि जो भी विंग्स है, चाहे ट्रांसपोर्ट का है, चाहे धार्मिक है, लेकिन जब प्रोग्राम करते हैं, कनेक्शन में आते हैं, उनसे लगातार कनेक्शन में रखते रहे, वो नहीं होता है। जब फिर प्रोग्राम होगा तब पत्र भेजेंगे, निमंत्रण भेजेंगे, फिर से आओ, लेकिन समय पर तो समय बाप दादा ने एक फॉरेन का समाचार सुना है कि एक लाइफ टाइम्स का जो प्रोग्राम करते हैं उसमें लगातार हर सप्ताह जो भी आते हैं और अच्छा लगता है, जिज्ञासा उठती है, कनेक्शन होता है, लेकिन पक्के रिलेशन में लाने के लिए उनकी पीठ नहीं करते। 6 साल के बाद वो याद आ गया तो आ गया, कनेक्शन हो गया तो हो गया, लेकिन हर एक की एड्रेस पर उनको कुछ न कुछ सप्ताह में बेचना चाहिए, जिससे उनकी पालना होती रहे। बिना पालना के फिर कभी नहीं भरा होता। सिर्फ प्रोग्राम नहीं, प्रोग्रेस भी उनकी करानी चाहिए। नस्तिक आते जाए और रिजल्ट अपने पास रहो। इस वर्ष में कितने नजदीक रिलेशन में आए, समझा सुना?
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।